0: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
1: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
2: हाय, दिस इज हरभजन सिंह,
3: योर ओन बज्जी,
2: एंड यू आर लिसनिंग टू क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो सिटी।
1: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
0: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर। योनो एसबीआई पावर टू एवरी इंडियन।
4: निवास के प्रसन्ना इसेल கார்த்திக் வரிகள்ல அபி ஜோத்பூர்கர் மற்றும் ஸ்வேதா மோகன் குரல்கள்ல சாகிரேன் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ரேடியோ சிட்டில.